0: प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन संसदीय व्यक्ति विषय संचार माध्यमेषु पृष्ठानां प्रश्नानां विषये परराष्ट्र मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं वर्तते। नेपाली भूमिम लिपुलेख क्षेत्रम सम्बुय मानस सरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालने आनितो स्थिति विषय नेपाल सर्वकारस्य आधिकारिकी धारणा गत वैशाखस्य विंशे दिवसे एव स्पष्टीकृता स्थिति परराष्ट्र मन्त्रालयेन ज्ञापितं वर्तते। विशेषमिन नेपाल भारताभ्याम एव कूटनीतिक माध्यमेन समस्यायाः समाधानस्य प्रतिबद्धता च व्यक्ता स्थिति परराष्ट्र मन्त्रालयेन प्रकाशितायं विज्ञप्तौ ज्ञापितं वर्तते। विज्ञप्तौ नेपालस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमानः 1680 सुगौली सन्धिना निर्दिष्टाः वर्तन्ते। सुस्ता लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी क्षेत्रेषु सीमाङ्कनम् अवशिष्टमस्ति। एतानि स्थानानि विहाय अन्येषु कतिपय स्थानेषु सीमातिक्रमणस्य भूमेः भोगाधिकारस्य च समस्याः विद्यमानाः वर्तन्ते इति च स्पष्टीकृतम् अस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे प्रधानमन्त्रिणा शाहेन संसदि उल्लिखितो विषये उल्लिखिता विषय 10 गजेति सीमारेखायाः अतिक्रमणेन सह सम्बद्धोऽस्तीति परराष्ट्र मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं वर्तते। राष्ट्रियसभाया ह्यस्तनोपवेशेन प्रतिनिधिसभातः ससन्देशं प्राप्तम् एतद् विक्रमवर्षीयं प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बद्धं प्रथम संशोधन विधेयकम् एतद् विक्रमवर्षीयं मतदातृनामावली प्रथम संशोधन विधेयकं च पारितीकृते स्तः। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहस्य पक्षतः विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा शोभिता गौतमेन विधेयके इमे पारितीक्रियतामिति निगद्य प्रस्तुतौ प्रस्तावौ पारितीकृतौ वर्तेते। तत्पूर्वं प्रतिनिधिसभातः ससन्देशं प्राप्तं विधेयकमाधृत्य प्रकरणगतं विमर्शनं सम्भूतम् आसीत्। विधेयकमाधृत्य सम्भूते विमर्शने सांसदैः उत्थापितान् प्रश्नान् उत्तरयन्ती विधिमन्त्री गौतमः समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बद्धाः संशोधनप्रस्तावाः निर्वाचनसम्बद्धस्य विधेः संशोधनस्य क्रमे सम्बोधयिष्यन्ते इति प्रतिबद्धताम् अभिव्यनक। अत्रान्तरे राष्ट्रियसभायां महिला समन्वय समितिः सङ्घटिता अस्ति। समितौ सांसदाः दुर्गा गुरुङ, पूजा चौधरी, मीना सिंह रखाल, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, रेणुचन्द, विष्णुकुमारी सापकोटा, सम्झना देवकोटा च वर्तन्ते। राष्ट्रियसभायाः अपरोपवेश अद्य दिवास सपादैकवादने वसति। इति समाचाराः।
1: नेपालमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले वार्षिक 34,000 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ, तर यो लतको अन्त्य सम्भव छ। यदि तपाईँ धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको लत त्याग्न चाहनुहुन्छ भने आजै गोप्य र निशुल्क परामर्श सेवा हेल्पलाइन 1132 सम्पर्क गर्नुहोस्। यो परामर्श सेवा कार्यालय समयमा उपलब्ध छ। याद राख्नुहोस्, धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको त्याग्न परामर्श सेवा हेल्पलाइन 1132।
2: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, टेकु, काठमाडौँ।

यी रेडियो नेपाल हो। अब सरस्वती राई दनवारकबाटै दनवारी भाषाको समाचार सुन। प्रतिनिधि सभा विपक्षी दल लखे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहे प्रतिनिधि सभामा आइकु माफ नै मागेसम्म सदन चलै नै दिला निर्णय गरिरहेलिक। सिंहदरबारमा आज बस्ला प्रतिपक्षी दल लखक बैठके प्रधानमन्त्री शाहे नेपाल भारत सीमा विषयमा दिल अभिव्यक्ति गल्ती गर्ल निष्कर्ष निकाल्ती सभा रेकर्डकबाटै हत्यालय माग गर्ला निर्णय गर्ल हो। बैठक पछि संचारकर्मी सँगै कुरोकर्ती नेपाली काङ्ग्रेसक सचेतक निष्कल राय प्रधानमन्त्री शाहै बाजल कुरो सत्य हो भने स्पष्ट पारे पर्ला नत्र भने संसदकबाटै माफ मागै पर्ला बाजिरेलक। प्रतिपक्षी दलक बैठके प्रधानमन्त्री बाजल कुरो राष्ट्रघाती अघिको रेकर्डकबाटै हट्यालै माग गर्ला निर्णय गर्ल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य सचेतक युवराज दुल्लाले जानकारी दिल र छाट। बैठकमा सहभागी श्रम संस्कृति पार्टी मुख्य सचेतक आर्यन राई तसु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुख्य सचेतक खुशबू ओलीसुरा प्रधानमन्त्री गल्ती बाजलमा सच्या पर्ला बाजल र छत। मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसे बोल्लमा आज सिंहदरबारमा काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी श्रम संस्कृति तसो राप्रपाक बैठक बस्ल हो। राष्ट्रिय सभा सांसद लखे जैलकानो प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहे नेपालले पनि थुप्रै ठाउँमा भारतक सीमा मिचिरैलिक बाइकु दिल अभिव्यक्ति सचिवालय माग गर्ती विरोध गरिधरेला। आजक बैठकक आकस्मिक समयमा साराती सांसद लखे रञ्जित कर्ण राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे रामकुमारी झाँक्री तसु तुलप्रसाद विश्वकर्मा नेपालक 62,000 हेक्टर जग्गा भारतले हडपल स्पष्ट अख्ता आक्ति प्रधानमन्त्री साहेब भारतक पक्षमा बाजल कुरो सेबे नेपाली सिरझुकल बाजिरेला। बैठकमा सांसद लखे नेपालले भारत कुन कुन ठाउँमा कटका जग्गा बिचिरैलिक बाइकु सदनमा आइकु प्रधानमन्त्री उत्तर दे पर्ला बाजल र छत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाक सभापति रवि लामिछाने आज भारत जैरिलक। भारतक जनता पार्टी भाजपाक अध्यक्ष नितिन नवीनक निम्तोमा सभापति लामिछाने इए जेठ 18 गते वा आज सुको 22 गतेसम्म भारत घुमे जैला रासोपाई जनाल रचिक। पार्टी जैलकानु जारी कर्ल प्रेस विज्ञप्ति अनुसार घुम्ते खनी सभापति लामिछाने भारतक नयाँ दिल्लीमा उपरग स्तरक राजनीतिक तसु कुटनीतिक भेटवार्ता कर्लार कार्यक्रम रचिक। इएमाज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाई आइलार असार 7 गते सो 9 गतेसम्म चितवनमा अखै लाग्ला महाधिवेशनक तयारीले चाँचारो करै लागिरहेलिक। रासोपाई पहिला ऐतिहासिक महाधिवेशनले पूरा गरेले पार्टी सभापति लामी छानिङ नेतृत्वमा मुख्य आयोजक समिति गठन गर्ल हो। महाधिवेशनले भव्य तसु व्यवस्थित रूपमा गरेले पार्टी सभापति लामी छानिङ अध्यक्षतामा महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गर्ल पार्टी प्रवक्ता कविन्द्र बुर्लाकोती जानकारी दिल र छाट। उसे समितिमा पार्टी उपसभापति तसु अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले महामन्त्री दुईजना कविन्द्र बुलाकोटी तसु भूपदेव शाह सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी सह कोषाध्यक्ष वसुमाया तामाङ प्रवक्ता मनिष झा सचिवालय सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठ तसु दीपकराज बोहरा रहिस भने समितिमा गणेश पराजुली कानून मन्त्री सोभिता गौतम परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल हरि ढकाल सहित लग्न छत्। यसै समिति आइलार महाधिवेशनलाई व्यवस्थित प्रतिनिधिमूलक तसु संगठनात्मक रूपमा बलियो बनाला लक्ष्य लिइरहेलिग। डडेलधुराक परशुराम नगरपालिका पाँचकबाटै जैल शुक्रबार सो बेपत्ता अग्ल सशस्त्र पुलिस बलक बठ्या ओम प्रकाश पुन मगर तसु स्थानीय तीर्थ बहादुर थापा मगर मर्ल अवस्थामा आज भेटाल रचिक। जिल्ला पुलिस कार्यालय मुख्य वरुण बहादुर सिंहक अनुसार 56 वर्षक थापा ग्लास परशुराम नगरपालिका पाँच भिटर महाकाली लरिक कलपट्टेमा फेला पर्ल हो भने सशस्त्र पुलिस बलक बोर्डर आउटपोस्ट बिओपी परिगाउँमा काम गरिधरल बठ्या पुन मगरक लास कञ्चनपुरक ब्रह्मदेवक महाकाली लरी किनारमा भेटाल हो। परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाली जग्गा लिपुलेख हक्ते भारतीय चाल्याले आन्ल मानसरोवर तीर्थयात्राबारे नेपाल सरकारले इसे आगुने आफ्नै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसिद्धाल जनाल रचिक। यी विषयमा नेपालले पाठाल कुटनीतिक नोटक उत्तर भारतकबाटै पनि कुटनीतिक नोटकबाटै नै पाइल तसु दुईवटा देशी सीमाबारे भनाभन कुटनीतिक छलफलकबाटै हटालार कट्टरता व्यक्त गर्ल मन्त्रालय जनाल रचिक। बागमती प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सरकारकबाटै धरला आइलार आर्थिक वर्ष 2083-84 नीति तसु कार्यक्रमबारे आज सोको छलफल सुरु भइरहेलिक। प्रदेश सभाग आज दिनखनी बस्ल बैठकमा नीति तसु कार्यक्रममा दफावार छलफल हक्ल प्रदेश सभा सचिवालय सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिल र छाट। यी जेठ 12 गते बस्ल बागमती प्रदेश सभाग बैठकमा प्रदेश मुख्य दीपक प्रसाद देवकोटै नीति तसु कार्यक्रम थर्ल लग्छ।
दाङक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 गुल्मचोकमा आज बिहानी टिप्परक ठकरक बाटे मोटरसाइकलमा चढ्ल बाब्याक बेटाक ज्यान जैरेलिक। दुर्घटनामा परेको लमही नगरपालिका 5 बसलार 35 वर्षक मनोज नेपाली तसु ओखरक 5 वर्षक बेटाक मिनराज नेपाली ज्यान जैल तसु मनोजक बोएक 34 वर्षक अमृता नेपाली घाइते अख्ल। जिल्ला पुलिस कार्यालय दाङक सूचना अधिकारी तसु डिएसपी रेशम बोहराई जानकारी दिल रछात। काभ्रे बलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिका कार्यालय धेरै प्राविधिक कुरो पर्ला ठाउँमा सारलार भैरिलिक। विक्रमसम्म 2082 साल भदौ 3 हप्ता अख्ल जेएनजी आन्दोलनमा बनेपा नगरपालिका टोडफोड तसु आगी लाग्ल रलिक। अग्नि 10 नम्बर ओडा कार्यालयबाटे अस्थायी रूपमा नगर कार्यालय चालाते आइल। उसे भवन फेरि नै बानालार हख्नेसो 5 नम्बर ओडाक नेपाली बनेपा बहुप्राविधिक शिक्षालयमा सारे लाग्ल हो। नगरक स्वामित्वमा रहल जग्गामा बानाला पर्ला ठाउँ उसे भवनले अस्थायी प्रशासक कार्यालयक रूपमा चालालार तयारी गर्ल बनेपा नगरपालिकै जनारे लिग। शिक्षालयमा अग्नि प्राविधिक शिक्षा तसु व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी भिटर भिन्न भिन्न विषयमा 3 वर्षे ब्याचलर तहक तसु छोटो समय सिपमूलक तालिम सुरा चालाते आइरे लिग। काठमाडौँ महानगरपालिका छात्रवृत्ति छानलार जाँचकबाटे 14,057 जना विद्यार्थी पास भइरहेला। जैलकानो छात्रवृत्ति जाँच लिलार समितिक निर्णय अनुसार चुटेकमा 40 अङ्क पाइलार विद्यार्थी सुरुक योग्यता रोलैसो रिजेल निकालेको ओटका पास हक्ल हो। उसे छात्रवृत्ति जाँच महानगरपालिका भिटर चालाधरल पढालार संस्थामा शैक्षिक सत्र 1983-84 कक्षा 11-12 पढेलै अख्ल महानगरपालिकै जनारे लिग। छैटौँ नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव जैलकानुसु सुरु भैरेलिक। चाबैलमा रहल चलचित्र विकास बोर्डमा सुरु अख्ल 3 दिने महोत्सवमा आदिवासी जनजाति समुदायिक भाषा संस्कृति परम्परा इतिहास तसु सांस्कृतिक पहिचान झल्कालार खालक कथा तसु चुटी चुटिना फिल्म जानकारीमूलक वृत्तचित्र तसु एआई जेनेरेटेड चित्र देखालार आयोजकीय जनारे लिग। महोत्सवमा निर्देशक सागर केरुङे आदिवासी जनजाति भित्र भिन्न भिन्न समुदायिक मौलिक कथा तसु जीवनशैलीलाई समेटेको फिल्म लग देखालार जानकारी दिल रछात। बाजुराग बढीमालिका नगरपालिकामा जैलकानो छुट्टा छुट्टै घटनामा भिरकबाटे लडेको 2 जना ज्यान जैरेलिक। घाँस काटै वन जैल 1 जना बुद्री मानुस बढीमालिका नगरपालिका 1 पाटाक 60 वर्षक मान बहादुर दानी तसु 1 जना छोडाते उय नगरपालिका 6 कोर्दक 6 वर्षक जसना खड्काक भिरकबाटे लडेको ज्यान जैल जिल्ला पुलिस कार्यालय बाजुराई जनारेलिक। यसनिके महोत्तरी गौशाला नगरपालिका 12 परपरियामा इनार खन्तेखनी 1 जना बठ्याक ज्यान जैरेलिक। जैलकानो दिनखनी 36 फिट गहिरो इनार खन्तेखनी निस्सासीको सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका 13 बसलार 22 वर्षक बसन्त कुमार महतोक ज्यान जैल जिल्ला पुलिस कार्यालय महोत्तरी पुलिस जवान पञ्चलाल गोले जानकारी दिल रछात। आजुलै दनवारी भाषाक समाचार सिद्धिलिक हस्त शिवा ढोकरिनु।

दि रेडियो नेपालीन आङ सिरिङ लामा शेर्पा ने शेरिके कि साङ्ग्युर सेन्रोनाङ प्रतिनिधि सभाकी विपक्षी शोखातुई सिलोन बालेन्द्र शाहकी प्रतिनिधि सभाला फेम्ने थुला मासु सेग्ला टोसोक जिङक्योङ किमिजु थाकचोत क्यानोए सिंहदरबारला आरिङदेउ सक्दुला प्रतिपक्षी शोखातुई सिलोन बालेन्द्र शाहकी यम्बु तङ्ग्याकर्की सन्समकी कोर्ला जकु सुङलप ट्याङ्बुमिदुप थाकचोत कि सिलोन कि सुङलप लेन्जोम कि रेकर्ड तेमा मेता जोगु सु जकु सेनुए नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक निष्कल राईकी सिलोन शाहकी सुङ्गुप तामिया ट्याङ्बु इन्दुबिन सिंह टसक्ला फेम्ने सलु जोगो सुहजाक नाङसुङ तुगरङ क्याने नेकपा एमालेकी चिचु सोखी गोठित पद्म अर्यालकी सिलोन शाहकी सुङ्गुप सुङलपकी एमबी सेतोङला क्योन फोकुतपकी सिलोन शाहकी टसक्ला थुला सुगो ताङ नियामावली तेरिकी तन्दोकला फेन्छेन पोङ्गुप क्याने जोगोला सुहजाक नाङसुङ प्रतिपक्षी सोखी सक्दुला सक्सुगो तुप श्रम संस्कृति सोखी सचेतक सो आर्यन राई ताङ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सचेतक सो खुसबु ओलीकी सङ सिलोनकी जगु सुङलप ग्यालखापकी खप्तेला ओतुप सुङसुङ प्रतिपक्षी शोखा सो नेपाली काङ्ग्रेसी गोठितला आरिङ सिंहदरबारला नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी श्रम संस्कृति पार्टी तङ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी पिर्मी सक्दुदेउ सेनवाए दिपरलारङ प्रतिनिधि सभाकी छोक्दु कामाच्याङकी तन्दोकला क्युनुजोकु सेनवाए छोकमितुई सिलोन बालेन्द्र शाहकी दाङ टसोक्ला सुङलप नङ्गुरीमाला जकु सुङलप माडिकुसी मोकुल क्यासीमा छोक्सो डोलप्रसाद अर्यालकी छोक्दु कामाच्याङकी तन्दोकला क्युनुजोकु यिन छोक्सो अर्यालकी लाकी थो नाङसिन टसोक जिनक्योङकी तुप्ला रोग्रम किगोला छोकमितिवाला सु नाङसिनाङ प्रतिपक्षी शोखातुई मोकुल क्युनमाजाक्सीमा छोक्सो अर्यालकी छोक्दु क्युनुजोकु सेनवाए राष्ट्रिय सभाकी आरिङ सक्दुला छोकमितुई दाङ प्रतिनिधि सभाकी छोकदुला सिलोन बालेन्द्र शाहकी नङ्गुप सुङलपकी खप्तेला मोकुल क्यासीमा राष्ट्रिय सभाकी आरिङकी छोकदु क्युनजकु सेनवाए छोकदुला छोकमितुई यम्बुकी सङ्घ्याकर्की सन्समला क्योन घेमवाए सिने सिलोनकी नङ्गुप सुङलप ग्यालखापकी खप्तेला हुतु सुङिन दि तामिया ट्याङ्बु मेतुपसिंह छोकदुला मोकुल क्याउन छोकदुला राष्ट्रिय सभाकी छोक्सो नारायण प्रसाद दाहालकी सिलोन शाहकी नङ्गुप सुङलप कोर्ला सिलोनला सु नाङ्ने तुसोलारङ ती कोर्ला सलु जब सुङिन सभा जिनक्योङ कितुब्ला रोग्रम कि गोला छोकमितेउला सु नाङवाए राष्ट्रिय सभाकी सक्दु सलाङिन मोसुजो चिकताङ कामाच्याङला देतुप सेनवाए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोक्सो रवि लामी छाने आरिङ ग्याकर फेमवाए भारतीय जनता पार्टीकी चिख्याप नितिन नवीनकी देन्छाङला ग्याकर फेउ सोक्सो लामी छानेकी जेठलाकी गते च्याप्गेने जुन गते निसु निसे ग्याकर कि जिकोर कितुप रासोपाकी सेनवाए सोखी दाङ ख्यापेल ख्याउ प्रेस विज्ञप्ति नङसिन जिकोर कि रिम्बाला सोक्सो लामी छानेकी ग्याकर कि नयाँ दिल्लीला थोरिम सब्सित तेजिन कुटनीतिक थुक्टेत कि तुप्ल्यारी मधुप सेनवाए छोक्सो लामी छाने तङ क्याने रासोपाकी छाग्रोक महामन्त्री तेजिन प्रतिनिधि सभा छोक्मी विपिन कुमार आचार्य टुङ्गी खाङ छोक्मी तेजिन प्रतिनिधि सभा छोक्मी दीपक बोहरा निकिता पौडेल तङ प्रदीप आचार्य सङ ग्याकर्की जिकोरला छोक्सु क्या नङ्गुप सेनवाए रासोपाकी सुङसेपा मनिष दाकी ख्याफेल क्या नङ्गुप विज्ञप्ति नङसिन एमबी सुङसप खाङकी छोक्सो लामी छानेकी थोरिम स्तरकी थुक्टेकी तन्दोकला टुङ्गुकी ओतुप सेनवाए सोखी छोक्सो रवि लामी छानेकी गोठितला जो छोक्पी ताङ्गुप लेन्जोमला टडिक ओतुप ताङ यार्गे जब मिकुल ओतुप सेनवाए सोखी थेङ ताङबोकी ग्याल्योङ लेन्जोम नितोङ गेचु ग्या सुम असार लाकी गते दिन ग्या ताङ्गुकी सेर्मु सितावनला कोडिकी तुप टडिक्यान ओतु सेनवाए छोक्सो लामी छानेकी गोठितला जो महाधिवेशन मूल आयोजक छोक्पी छोकमितिवाला छोक्सो सोनपा डाक्टर स्वर्णी मुवाकले महामन्त्री कविन्द्र बुर्ला कोटी मनिष जा सोभिता गौतम शिशिर खनाल तङ हरि डकालसँग जुन ओतुप सेनवाए सोखी केन्द्रीय छोकपी छोकमी तेजिन प्रदेश छोक्सो तेवालासँग लेन्जोम टडिक्ला इन्जिक मिजिक छोक्सुकी गौ सेनवाए सिङ्गेल नोनखाङकी एमबी ससिङ लिपुले सखुल्ने ग्याकर्की जिनक्योङ क्याउ मान सरोवर न्याकोर लामकी कोर्ला एमबी सुङकी दिसिनाङ गोमालारङ आधिकारिक टोङ्गु ख्याफेल क्याउ सेनवाए दि कोर्ला यम्बु तङ्गुप कुटनीतिक नोटकी लेन ग्याकर न्यासङ कुटनीतिक नोट त्यामारङ न्याउ तङ ग्यालखप निकर्की सन्सम कोर्ला थेन्दुप कले त्यो कुटनीतिक टोङ्गु क्याने मेता जब ख्यालेन क्याउ लोनखाङकी सेतुबिन लोनखाङकी आरिङ विज्ञप्ति सिक ख्यापेलकी यम्बु तङ्ग्याकर सन्सम कोर्ला सिलोनकी टोसोक्ला नङ्गुप सुङलप क्रस बोर्डर अकुपेसन तङ दस गजा सखुल तङ क्यान थिने ओतुप कोर्लासँग सलुजौ सेनवाए यम्बु तङ्ग्याकर पर्ला तोङने जुन सन्सम पेन ओतुप सिंह लोनखाङकी यम्बु तङ्ग्याकर सन्सम नाङला लिम्पिया दुरा लिपुले कालापानी सखुलकी पार जोगौ लाका लुन ओतुप लोनखाङकी सलुजोनवाए
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी छात्रवृत्तिकी तन्दोकलाई क्याउ परीक्षा तेमा मिरा तोङ चुब्जी ताङ अप्सुङा आङी लोपटुक्तिवा पास गलु सेन वाय महानगर कि दाङ जिन्क्योङ क्याउ छात्रवृत्ति परीक्षाला युङसोकला आङ सिप्चु खुर्ने वा लोपटुक्तिवी रिजल्ट खेबेल क्याउ सेन वाय ती छात्रवृत्ति महानगरपालिका नाङला जिन्क्योङ क्यान हो तुप्सुङकी लोपटाला नितोङ गेचुग्या सुमताङ गेचुग्या जिल्ला जिन्टा चुचुचिक ताङ चिङिला लोपजुङकी तुप लोपटुक्ति तन्दोकलाई क्याउ महानगरपालिकाकी सेतुभिन बागमती प्रदेश सभाकी छोग्दुला प्रदेश सुङकी जकु पल्जोर लोङितोङ गेचुग्या सुमताङ गेचुग्या जिकी सिचु तेजिन ल्यारिमकोर्ला आरिङ नेजुन टोङ्गु गोचुन वाय प्रदेश सभाकी छोग्दुला आरिङ सिचु तेजिन ल्यारिमकोर्ला टोङ्गु कितुप लाकी थोदुप प्रदेश सभा टुङ्गी खाङकी टुङ्गिक रामकुमार पौडेलकी ख्यान्तोक नाङ्गुबिन जेट लाकी गते चिङ्गी छेर्मु देउ बागमती प्रदेश सभाकी छोग्दुला प्रदेश सो दीपक प्रसाद बासकोटाकी सिचु तेजिन ल्यारिम क्या नाङ्गुप सेन वाय थेङटुकी नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र लेन्जोम आरिङ गोचुन वाय चाबिल्ला उतुप चलचित्र विकास बोर्डला गोचु निमा सुम्की लेन्जोमला आदिवासी जनजाति सिसोकी के रिक्सुङ लुक्सोताङ लोग्यु कोर्की लघु चलचित्र वृत्तचित्र तेजिन एआई जेनेरेटेड वृत्तचित्र छ्यादेन्दुप आयोजकी सेतुभिन लेन्जोमकी निर्देशक सागर केरुङकी आदिवासी मिरुक्टी नङ्गी चिसोक नासोक ताङ डेलो उतुप कोर्ती ज्याङ उतुप खेन्तोक नाङसुङ आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घकी कार्यवाहक चिखेप विशल लामाकी जनजाति तुइके रिक्सुङ ताङ लोग्युला सुङक्योप कि दुप्ताङ यार्ग्याजोप्ला दि लेन्जोम फेन्चेन पो दुप सुङसुङ लेन्जोमकी तेमडिल क्यानाङगिन चलचित्र यार्ग्या छोकपी चिख्याप दिनेश डिसीकी दुकै लेन्जोमकी रिक्सुङ ताङ मोटो सुङक्योप कि दुप्ला रोक्रामुङ्गुप इसे क्या नाङसुङ हुम्ला ताङ बाजुराकी सन्छम सखुल लामपाटाला चुङ्गुप ङोकुल ताङ थम्बु कोर्ला तामिया ट्याङ्बु सचेतुप्ला नाङसित लोनखाङकी जौ टोङ्गु सोक्पा सन्छमला लेमवाय एसएसपी विमलराज पौडेल गोठितकी सोक्पा दाङ सिमकोट लेपु जोङकी कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङकी डिएसपी शङ्कर खड्काकी खेतोक नाङ्गुबिन दिसिनाङ गमाला गलुप जेटलाकी गते निसु निनेजुन गते जिसेक सन्छम कोर्ला हुम्ला ताङ बाजुराकी मितुई पर्ला थम्बु सोर्सीमा नाङसित लोनखाङकी सोक्पा जौ सेनवाय डडेलधुराकी परशुराम टङ्केर ओडा आङ्गने गलुप जपासाङ छेर्मुने जुन तोरुप सशस्त्र कोर्सुङ मक्मी बल्की ज्वन्दा ओम प्रकाश पुन मगर ताङ त्याकी मि तीर्थ बहादुर मगर नासा गलुप कप्ला हारिङ्गेन वाय जोङकी कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङकी सो वरुण बहादुर सिङकी सेतुप नाङसिन तीर्थबहादुर थापा मगरकी फुङबु महाकाली चाङबी गारीला न्युएनसिसी सशस्त्र कोर्सुङ मक्मी बल्की बिओपी पारिगाउँला लाकाकी ओतुप ओम प्रकाश पुन मगर कञ्चनपुरकी ब्रह्मदेवला ओतुप महाकाली चाङबी गारी लङ्गेऊ सेन वाय दाङकी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा आङ्ग गुल्मा चोकला हारिङटोपला टिपर्की मोटरसाइकल गेम्ने मिराङी नासागलुप सेन वाय टिपर्की मोटरसाइकल गेम्ने मोटरसाइकल तङ्गुप्मी लमही टोङ्केर वडा आङ्गकी लोसुङची सुवाङकी मनोज नेपाली ताङ खोङकी लोङकी पुजुङ मिनराज नेपाली नासागलुप जोङकी कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङ दाङकी डिएसपी रेशम बोहराकी ख्यान्तोक नाङ्गुबिन दपियोकला स्वरूप खोङतियो नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजला मेन्जुकी तुप्रिम्बाला नासागलुप सेन वाय दैलेकी भैरवी हुल्सोकपा वडा आङ्गा काल गाउँला जीप दपचोकलाई स्वर्ने मिरा सुम नासा गनवाइसिसी मिराङ्गालाई क्योन फोकु सेन वाय सुर्खेतने कालीकोट डोइङ ओतुप जीप आरिङ निर्मो ब्रेक फेल गर्ने लामसिनाङ मिटर सही सुम वकला लुम्ने मिरा सुम नासा गलुप ताङ याम्बा मिराङ्गाला क्योन फोकु जोङकी कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङ दैलेकी चो डिएसपी श्रवण कुमार विश्वकर्माकी खेतोक नाङ्गुबिन जीप दपचोकलाई स्वर्ने नासा गलुप मितुई मोसी कोर्सुङ मक्मीकी कि ओतुप डिएसपी विश्वकर्माकी खेतोक नाङसुङ दपचोक्ला स्वरूप याम्बा मिराङ्गाला सुङक्योप ल्याच्यात्पा ताङ सानेदेशन मितुई मेन्जु कितुप्ला जोङकी म्यानखाङ दैले खुर्ने वाउ सेन वाय बाजुरा जोङकी बढी मालिका टोङ्केर्ला दाङ टकिलाने तलागेम्ने मिराङी नासागल वाय चङ्गाक डोब्रिमाला गेन्दा मिराचिक ताङ पुम मिराचिक नासागलुप जोङकी कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङ बाजुराकी इन्सपेक्टर गगन सिंह बाटकी खेन्तोक नाङ्गुबिन नासागलुप त्यो बढी मालिका टोङ्केर ओडा आङचिक लोटुक्सुकी मानबहादुर धानी ताङ लोटुकी पुम जमिना खड्का हिन्दुप सेन वाय रेडियो नेपाल ने आरिङ किशोरी केकी साङ्गिर डुप्सुङ थुसिसे

0: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
1: लसो फ्याफुल्ला रेडियो गेताङ मुगलानला गे अर्थात् वैदेशिक रोजगारी राङ्दा डेनमला गा सूर्य मोक्तान वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङला रोरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल से शोभा चु गेताङ साताला तिरेम दिनीला ब्लिङ यासे चुइसे घा मिनेट निबली छ चुइसे घानु मिनेट ज्ञानबारी खाम्बमुला तिनीला गेताङ रे वैदेशिक रोजगार बोर्डला लोनखाङ से पिनमान खाबा सेवा गदे थि सेवा किनमारी खाम्बा घेलापा मिला धिम थेमे थेन सरोकार थान्बा मिसे थाहा याङडुन तो बा सूचना थेन जानकारी गदे थान्छेलमुला विशेष लसी चु गेताङ रे फिर्का भ्युले निबा बिमा घा छ निबाली छ थेन निसी ए खाबा लिछा सेनुन तो बा थेन गुनुन तो बा तिलाई ताम दिनुन थान्छेलमला चुरानु नसी तिनीलाई गेताङ्रे वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङला निर्देशक कल्याण पुनर्स्थापना थिन संचार शाखाला ग्रेनपो भूपेन्द्र सापकोटा थिन बोर्ड लोनखाङ से पिनमान खाबा कल्याणकारी सेवाला फेरि लाबाताम ज्ञानमारी खाम्सेलमला गेताङ लिच्छा दोना ज्ञानमारी राङ्दा मोहिजेनमला फिर्के भ्युल्ली गेलाबारी निबी माछा राङ खाप ह्युल्ली निबनमुला तिल गेलाबारी निबनमुला थे गेलाबारी सेब मुला कि आसेब मुला राङ निबन मोबा ह्युल्ला ग्यो सेब मुला कि आसेब मुला थे युल्ला ठिम थेन ह्युल्ठिम खाराङ बमुला थे युल्ला मिसे तिल धर्म तेन बमुला थे युल्ला मिदा ताङमा थेन आताङमा ताम तिल तिल ताब मुला बेबा ताङगा देनुन सेसी गोसी चकेन नितो बमुला याङसे खाजी बन ह्युल्ली निसी गेलामा तिलै ताम आसेसम आगोसम थेन थेन तामलाबारी सेनुन तोब बेबा थे युल्ला ग्यो हिन्ना थेन्न ग्योई आगोमा थेन्से तिल गे लाउ बिबा खाराङलासी लाउ बिबा ताम था आतामा फिर्क्या भ्युले गेलाबारी निबा दुइरी लामान खाल्ला दुङ्गाल नादोबा लुबा आरोप पुइदोबा थेन लोलोलो कानुनी अर्थात् ठिमला झन्झट गदे नादोब मला थे तपसे फिर्क्या भ्युले गेलाबारी निबा नेपाली गादेला सुरक्षा पिनमारी गेलाबा मिला याङताम तिल तिल ताब मुला बिबा ताम सेना गोनालाबारी थेन रोलाबारी बिसी वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई लोनखाङसे लोलोलो कल्याणकारी घिखुर गदे सेङमान खाप मुला बोर्डसे सेङमान खापा गेताङ गादेला प्रभाव पहुँच तेन दान्देला अवस्थालाई फेरि जानकारी पिनमारी बिसी तिनी गणिसे वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङला निर्देशक कल्याण पुनर्स्थापना थिन संचार शाखाला ग्रेनपो भूपेन्द्र सापकोटा थिन ताम्ला बमुला
2: सबभन्दा पहिला त विदेश जान चाहने मानिसहरूलाई पनि सिपमूलक तालिम चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ
1: खप्पै बिमा गाछ जा फिर्के भ्युल्ली निबारी सेम्मु बागा दिदा गणिसे तालिम पिनमान खाप मोला गणिसे जा छोर्गान लेन लबारी खाम्मा थेन सिप लोपारी खाम्मा तालिम गदे पिनमान खाप मोला फिर्के भ्युल्ली निब बिमा गाछ पिडिओटी बिबा तालिम नुन पिनमान खाप मोला थे तालिम रिजा फिर्के भ्युल्ली गे लबारी निब दुई रियाङबा सेवा सुविधा गदे थेन फिर्के भ्युल्ली गे लाना लानन खालाइ जा अङ्ग भङ्गता सम घाइते तसम आखाम्बा तसम थेन असुरक्षित तसम तिल तिल लादब मोला बिबा याङ फिर्का भ्युलेन व्यवहारी सेतासम थेरङमा शिव मिला लुइरो दा नेपाल रि थेमिला दिम्दो न सानेबा गेनुन लाभन खाप मुला थेरानुन लसे गेलाबारी निबा दुई रि स्वीकृति किन्से निबा मुला बिसाम शिव मिला दिम थेमे से दिङ्गिक नाङ्री निवेदन पिन्दो मुला थेरङ लसे निवेदन पिन्साम शिव मिला दिम थेमे दा लाख चुइदो न टाङ्गा पिनमान खाप मुला चुरानुन लसे शिव मिला जाजको लागा दे चुइसे ब्रेदिङ बिमा मार्ला मुला बिसाम थेन्दा लोपखाङ तहदोना ब्रिबडोबा लोपारी छात्रवृत्तिला टाङ्गा पिन्सिनुन बोर्डला लोनखाङसे रोलाबन खाप मुला उसम खालै मि गेलाबा दुइरी अङ्ग भङ्ग तसम लाख निस्तो न टाङ्गा रोला पनि खाप मुल बेबतामी दोलन लसिन्जे थिराङ्नु लसे बोर्डलाई लोन खाङसे मनोपरामर्श सेवा गर्दैनन् पिनमान खाप मुला चुला छ्याम्रे दिम्थेमे नाङ्री तिलाइनु लसे फेब मुसाम थिन्न दिम्थेमे दजा बोर्डलाई लोन खाङसे जुम्न लसे पिनमा गेखोर गर्दैनन् सेङमान खाप मुला फिर्का भ्युली गेलाबा दुइरी खालैसे फौजदारी मुद्दा युव मुला बिसाम थिन्न मुद्दा बोर्ड से क्लाङसे पिनमा मुला गेलाबा मिदा गेलाबा ग्लारी खालैसे अन्याय लाभ मुसाम थिन्न गेलाबा दुइरी गा तसिटिप मुला बिसाम थे युल्ला ग्लेबन खाङला रोरी गणिसे थेनिगा दिदा उद्धारला पनि खेप मुला वसेम गन्न विभाग रे जा गुर्के कल सेन्टर थान्ब मुला थे कल सेन्टर से जा सातला निस्नुन रे निचु से ग्लिनुन घण्टा गेला पनि खाप मुला सु सेन्टर से जा गेलाबा मि थेन गेलाबा मिला दिन थे मे तोबा खाजी बैनुन खाल्ला जानकारी थेन समस्या गदे मुला बिसाम थेरी थान्बारी खाम्ब मुला थेरङ नसी थेरी थान्बा समस्या गदे त दुइसी बोर्से छाङनाला पनि खाप मुला
3: फिर्क्या भ्युली गेलाबारी निबा बेनान्से चुरङबा सुविधा गदे याङबामुला कि आयाङबामुला, जस्तो कि फिर्क्या भ्युल्डी गे लाबारी आताना ब्रिबा डोबारी निभाका देशे याङबामुला कि आयाङबामुला।
1: कल्याणकारी कोसे पिनमान खाप सेवाका देव किनमारीजा गेथेन रोजगार ब्लोनखाङला श्रम विभाग ग्याम स्वीकृति किन्से निभा अनुमति पिनमा ह्युल्डी निभाका देशे चेकनी याङबामुला ह्युल्से स्वीकृति आपिनमा ह्युल्डी निभाका देशे जा आयाङबामुला नेपाल सरकार से गेलाबारी सम्झौता लाभा ह्युल गदेरी निभा थेन श्रम स्वीकृति किन्से निभाका देशे चेकेन चुरङमा सेवा सुविधा गदे किनमारी ब्याङबामुला व्यक्तिगत रूपले निभाका देशे गेलाबा स्वीकृति किन्से निभामुला बिसा मेहनन बोर्ड पिनमान खापा बेरन सेवा सुविधा गदे किनमारी खाम्बामुला चुल अर्थ जातिलाई हिँड्न विसाम फिर्का भ्युली गेलाबारी निभा बिनान मिसे गेलाबा स्वीकृति किन्से चिक्कन निगाई विभाजा नेपाल सरकार से मान्बामुला
3: चुरङबा सेवा सुविधा गदे खारङलासी किनबारी खाम्बामुला ओम चुला प्रक्रिया गदे तिलतिला ताला
2: तरिका मैले भने नि यो सेवा चाहिँ अब विभागमा चाहिँ यदि वैदेशिक रोजगार
1: बोर्ड सिपिनमान खाबा सेवा सुविधा गदे किनबारी जाङगाई दोलन पाङजी नि खाप्पै बिमा गाछामी फिर्का भ्युली गेलाबारी निभा बिमा गाछा गेलाबारी स्वीकृति किन्से चेकेन नि तोङ मला चुराङलासी गेलाबारी निभा बिमा गाछा स्वीकृति किनमा तोङी से गार्जा गा चेकेन फासम कल्याणकारी कोष ग्याम पिनमान खाबा बेरन खाल्ला सेवा सुविधा गदे किनबारी खाम्बा मला चुराङलासी च्याङना टाङ्गा फासी नाङर गेलाबा दुईरी सिनोन सिसाम शिवमिला दिन थेमेसे लाग्छु दोन नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभाग ग्याम गेलाबारी स्वीकृति किन्से चेकेन निदोबमला चुराङलासी बिनान खाल्ला प्रक्रिया गदे छोनलासी निसाम नेपाल सरकार से पिनमान खापा बिनान खाल्ला सेवा सुविधा गदे किनमारी खाम्बामला
3: राङला शाखा सेजा पुनर्स्थापना थिन संचारला गेखोर कादेनुन सेङबान खाबामुला चु गेखोर नाङरीजा राङनिसे खारङबा खारङबा
1: अर्को तामलादोमा जाङै दोलोपाङजिनी कल सेन्टर से संचार ला गेलाबन खापुमला चुरीजा गेलाबा मिसे सातारे निस्नुन रे घण्टा निचुसे लिनुन गेलाबा मिला गुनासो थेन समस्या गदेला फेरि गेलाबन खापुमला कल सेन्टर से जा गेलाबा मिदा ठगब लसम थेन त न्याय पिनमा थेन कल्याणकारी कोष पिनमान खापा सेवा सुविधाला फेरि जानकारी गदे पिनमान खापुमला उसेम बोर्डला लुनखाङ से पिनमान खापा सेवा सुविधा गदे खारङमासे किनमारी खाम्बा मुलुम बिबा प्रक्रिया गदे गोबा सेमुला बिसा मेनुन थेदा तोब बेनन खाल्ला जानकारी पिनमान खापुमला
3: राङसे चुदे लहाना तामका दे सुङसाइनुन ठगब ताबा ताङमी काबरिन खाम्बारे
1: जस्तो कि फिर्क्या भ्युल्ने मुबा ग्लेबोन खाङ गेलाबा मिदा पुइबा कम्पनी थेन ट्राभल एजेन्सी खाला हिन्न तिल हिन्न थेन्दङनिसे सम्पर्क
3: सामाजिक सुरक्षा कोसरिनुन बो किन्सी टाङ्गा फासी निभा मुसाइनुन सामाजिक सुरक्षा कोसरी फादोबा टाङ्गा घुङ्री आफासम तिला ताला
1: कल्याणकारी
3: दाजा बोर्डला लोनखाङसे तिलाई सेवा सुविधा कादे पिनबा मुला कि आपिनबा मुला
1: सामाजिक परामर्श सेवा गदेनन पिनबान खापुमला ओसम थेन्सेजा तिलै गेलाबारी माइबन मुला बिसाम थेन्दा तोबा बिनान खाल्ला रोगदे बोर्डला लुनखाङसे लाबन खापुमला
3: राङसे दोलो गेलाबा मिदा तोबा छिमला फिरिनन तामला शिवमुबा फिर्क्या भिल्डी गेलाबा दुइरी गेलाबा मिदा खाजिबाइनन खाल्ला समस्या तासाम नेपाल ग्याम थेरी गे लाबारिम लानन खर्च ताबाथेन गाह्रो ताबादिनन खाम्बाताला चुराङमा ताम्रिजा खारङ लसी गे लाबान खाबामुला हो
1: धन्दै गनि थिएन तामलाबन मुबा वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङला निर्देशक थिएन कल्याण पुनर्स्थापना थिएन संचार शाखाला ग्रेनपो भूपेन्द्र सापकोटा
3: नेपाल सरकारसे फिर्क्या भ्युल्डी गेलाबा निवा छोङदा ज्याबा सोभारी चुदा सुरक्षित व्यवस्थित थिएन मर्यादित सोसी फिर्क्या भ्युल्डी गे लाबारी निवा गे लाबा मिथेन गे लाबारी फिर्क्या भ्युल्डी मि पुइबा छोङखेनला याङताम दा सोना लाबारी वैदेशिक रोजगार बोर्ड फाङबामुला ओसेम चो बोर्डला रेदाङसेला गे लाबारी वैदेशिक रोजगार बोर्डला लोनखाङ एनोन ठोङबामुला
1: वैदेशिक रोजगार बोर्डला लोनखाङसे विशेष लसी गे लाबारी निभा हिल्डी लोलो लोलो समस्या नाबा गे लाबा मिदा उद्धार लाबा माइबा गे लाबा मिला दिन थेमेदा अल्जाइमर गोर्लाङ नोङमा क्यान्सर तिङ सम्बन्धीला ह्यामराङमा रिङबा दुई हेन्से मान चनुन तोबगा देदानुन रोलाबन खापमुला चुराङनुला चाहिँ बोर्डला लोनखाङसे फिर्क्या भ्युल्डी गे लाबारी निभा दुई रि सिभा गे लाबा मिला सिभा लुइरो नेपाली बाबारी सिभा लुइरो बाबारी प्रक्रिया छेउना लाबा सिभा मिला दिम्थेमेदा टाङ्गा रोलाबा आखाम्बा थिन अङ्गभङ्ग ताबाका दिदानुन मानलाबारी खर्च पिनमान खापमुला
3: बोर्डला लोनखाङसे फिर्क्या भ्युल्डी गे लाबारी निभा धुरी सिभा गे लाबा मिला जाजा कोला काद्दा छात्रवृद्धि पिनबा थिएन गे लाबारी स्वीकृति पिन्सी फिर्क्या भ्युल्डी निभा गे लाबा मिदा हुल्ला ठिम्से पिनबान खाबा सेवा एनोन पिनबान खाबामुला ओसेम जामे कोला गे लाबा मिदा विषाम फिर्क्या भ्युल्डी गे लाबारी निभा बिमा गाछा अभिमुखीकरण तालिम किन्बा धुरी फावा टाङ्गा बोर्डला लोनखाङसे याइसी पिनबाई एनोन खाबामुला
1: बोर्ड लोनखाङसे अनलाइन ग्याम लुई सेवा परामर्श सेवा पिनमारी टेलिमेडिसिन सेवा अनुन सेङबान खापमुला वैदेशिक रोजगार बोर्ड से पिनमान खापा खाजीबाइनुन सेवा किनमा अथवा प्रक्रिया छोन लाबा दुईरी खाजीबाइनुन समस्या नहादोसाम वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङ रिमुबा समाधान कल सेन्टर 1141 रिसेन्दर रिफोन लाबारी खाम्बामुला ओसेम बोर्ड से पिनमान खापा स्यान सेवा गदेला फेरिनुन जानकारी तोसाम बोर्डला वेबसाइट www.feb.gov.npc गोबारी खाम्बामुला चुरानुला चाहिँ बोर्ड से पिनमान खाबा स्यान सेवा गदे किनबारी छो नाला दबा प्रक्रिया तोबा कागजात थिन सावधानी तादबा तामगदेरी विषाम खाबा रेला गेताङ्गदेरी जानकारी पिनमान निसेलमला खाबा रेडी प्रसारण तासेला गेताङ्गदे ज्ञानबारी नुन राङ्दा मोइजनमला सुनुन ताम थेन लोलो लोलो सूचना थेन जानकारी का दि थन्ना थनन तिनीला गेताङ याम फेसिनी बा दुई तासि जिन बमला गेताङ मुगलान ला गे अर्थात वैदेशिक रोजगार ला फेरि याङला तिलाई सल्लाह सुझाव थेन प्रतिक्रिया गदि मुला बिसान ननीला इमेल ठेगाना welfare@feb.gov.npthen info@feb.gov.npri इमेल ला बारी खामसेला मुला तिनीलाई गेताङ याङसुबारी राङ्दा लामा लामा थुजेछे खाबा सातारी देपेन अर्को गेताङ बासी खासलमुला थे दुई दोनादा नाना इन्दिरा थिङ थेङ सूर्य मुक्तान्त बिदा दन्सुको लासो फ्याफुल्ला

0: सु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिरी राङ्नी दा ढेनमुला गा इन्दिरा थिङ प्रतिनिधि सभा लातिनी लाचिचाङरी प्रतिपक्षी दल कादेशे काइब्लोन बालेन र साहसे तिल्मा लाचिचाङरी पाङबा ताम रेकर्ड ग्याम तेबारी सुङबा मुला चिचाङरी प्रतिपक्षी दल ला सांसद कादेशे काइब्लोन साहसे तथ्य प्रमाण री चिसी ताम थान्दोला सुङबान नेपाल से भारत ला मुर नाङबा विवाह प्रमाण मुला विसाम थानबारी सुङबा मुबा चिचाङरी नेपाली काङ्ग्रेस ला सचेतक निष्कल राइसे काइब्लोन साहसे संसद ला रोस्ट्रमरी राप्सी पाङबा ताम्री राङ कादेला नोट अफ डिसिजन मुला विवान नेपाल से भारत ला खारङ खारङ सा नाङबा हिनला होजा ओन्दोला बिसी सुङबा मुबा नेकपा एमाले ला ग्रेन सचेतक एन बहादुर महर्से युल्ला काइब्लोन सेन नेपाल से भारत ला सा नाङबा बिसी पाङबा ताम लुसीला हिनला सुङबा चु ताम याइसी किनबारी सुङबा मुबा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ला ग्रेन सचेतक युवराज धुलालसे युल्ला काइब्लोन जिम्मेवार तादोबारी बहुमतला बङ थेन अनुभव आतामा संसदरी आतोबा ताम थान्बा मुलाबिसी सुङबा मुबा सम संस्कृति पार्टीला ग्रेन सचेतक आरएन राई थेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय धल्ला गोबन ज्ञान बहादुर साई सेनोन काइब्लोनसे पाङबा ताम तथ्य प्रमाण थेन यथार्थ हिनला विषम प्रमाण थानबारी सुङबा मुबा चुराङलासिन प्रतिनिधि सभाला विपक्षी दल कादेशे काइब्लोन बालेन्द्र साहसे प्रतिनिधि सभारी खासी माफ आरी दे धोना सदन सेङबारी आपिनबा निर्णय लाबा मुला सिंहदरबारी तिनी चिबा प्रतिपक्षी दल कादेला चिसाङसे काइब्लोन साहसे नेपाल भारत मुर्ला ताम्री सुङबा ताम सभाला रेकर्ड ग्याम तेबारी पाङबा निर्णय लाबा हिला राष्ट्रिय सभाला तिनीला चिसाङरी सांसद कादेशे तिलमाला प्रतिनिधि सभाला चिसाङरी काइब्लोन बालेन्द्र साहसे सुङबा ताम्री विरोध लासिन चिबा लिचा राष्ट्रिय सभाला तिनीला चिसाङ स्थगित लाबा मुला चिसाङरी सांसद कादेशे नेपाल से नोन भारतला मुर नाङबा मुला बिसी काइब्लोन से सुङबा ताम युल्ला विरोध री मुला सुङबान सच्याइ दिबारी सुङबा मुबा चिसाङरी राष्ट्रिय सभाला चोहो नारायण प्रसाद धालसे लोलो लोलो माध्यम ग्याम काइब्लोन साहला ध्यान छेङना लासी चु समस्या थुम्ना लाबा विवान सभा सेङबारी सांसद कारिदा मोइजेन लासिउबा मुबा राष्ट्रिय सभाला चिसाङ दोषी नाङ्गर दिनीला गिक न्यासी चुइङा मिनेट्री चिबा गेखोर मुला रोङसा ब्लोनखाङसे नेपाली सा लिपु लेक थुम ताबान भारत से सेङबा मान सरोवर तीर्थ कोरबा घ्यालामला ताम्री नेपाल सरकार से चुङाचान रङला आधिकारिक ताम सार्वजनिक लासी झिनबा मुला बिसी पाङबा मुला चु ताम्री नेपाल से पुइबा कुटनीतिक नोटला जवाफ भारत ग्याम नोन कुटनीतिक नोट ग्याम खाबा थेन निनोन ह्युल्से मुर सम्बन्धी विवाद कादे कुटनीतिक काठुइ ग्याम थुम्ना लाभा प्रतिबद्धता लाभा मुला ब्लोनखाङसे पाङबा मुला काइब्लोनसे संसदरी थान्बा ताम्री कादे ग्लारी भारतला सा नेपाल क्यार ताबारी खाम्बा भिबा ताम प्राविधिक यथाथेन थुइबा मुला बिसी ब्लोनखाङसे स्पष्ट लाबा मुला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाला चोहो रवि लामिछाने तिनी भारत निस्युबा मुला भारतीय जनता पार्टी भाजपाला चोहो नि तिन नवीनला निम्तोरी चोहो लामिछाने तिनी हेन्से निचुई निला कुनु धोना भारत कोरबा गेखोर मुला बिची रासो पासे पाङबा मुला पार्टीसे तिलमा छिपा फ्रेस कागिर अनुसार कोरबा धुरी चोहो लामिछाने से भारतला छार दिल्ली रे ग्रेन स्तरीय ग्लेठिम थेन कुटनीतिक रूप ताबा गेखोर मुला कोरबा धुरी चोहो लामिछाने से भारत री मुबा नेपाली थेन पार्टीरी सेम थान्बा नेपाली कादे थेन रूप ताबा गेखोर मुला चुराङलासिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासो पासे राङला गिक्चा ह्युल्बाङ ग्रेन ह्वाल्ला तयारी लाबान आयोजक समिति शोभा मुला पार्टी चोहो रवि लामिछानेला चोहोबाङरी शोभा समिति से दाखाबा ग्रेन ह्वाल्दा ज्याबा थेन जेबा लाबा दोखाङ किन्बा मुला चोहो लामिछानेला चोहोबाङरी शोभा ग्रेन ह्वाल आयोजक समिति सदस्य कारेरी रो चोहो डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले लोन्छेन कविन्द्र भुर्लाकोटी मनिष झा शोभिता गौतम शिशिर खनाल हरि ढकाल लाछ्याम स्यान्दो गोबन कादे बुला हुम्ला थिएन बाजुराला मुर्थुम लाम पाटा रि ताबा मुर बिबा थिएन झडप लाताम गोबारी दिम्लोन खाङ्ग्याम शोभा च्याबा साइबा समितिला टोली होजा घ्लारी धोबा मुला एसएसपी विमल राज पौडेल गोबाङला टोली तिलमा सिमी कोट धोबा मुला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङला प्रहरी नायब परीक्षक शङ्कर खड्कासे सुङबा मुला चुङाछा निबा जेठ निला कुनु हेन्से ब्लिला कुनु धोना मुर्ला ताम्दा किन्ची हुम्ला थेन बाजुराला मिनिकादे घुङ्री ताबा झडप लिचा दिम्लोन खाङसे टोली सोबा मुबा दैलेखला भैरवी गाउँपालिका काल गौडारी जीप दुर्घटना तामा मेन्दो सोमिनी घटना ताबा घ्लारिन सिबा मुला बिसामा मेन्दो गा घाइते ताबा मुला सुर्खेत ग्याम कालीकोट निबान लाबा जीप तिनी दिनेरी दुर्घटना ताबा हिन्ला जीप्री क्रेबा मेन्दो ब्रे मिनी कादेरी मेन्दो गिक जामे कोला तेन मेन्दो नि जा कोला ला च्याम मेन्दो सोमिनी घटना ताबा घ्लारिन सिबा मुला बिसी प्रहरी गेजाङ दैलेखला ग्रेनपो डीएसपी श्रवण कुमार विश्वकर्मासे सुङबा मुला स्पिड रिसेङसी ब्रेक फेल तासी दुर्घटना ताबा प्रहरी से मानबा मुला चुराङलासिन दाङला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका गुल्म चोकरी तिनी छोरी टिप्पर से ठोकमा मोटरसाइकल रि क्रेबा आपा झासीबा मुला दुर्घटना रि लमही नगरपालिका घा दिम ताबा सोमचुई घा दिङला मनोज नेपाली थेन थेला घा दिङला जा मिन राज नेपाली सीमा मुला घटनारी मनोजला मृङ सोमची ब्ली दिङला अमृता पाली घाइते ताबा मुला डुछा नेपाली आदिवासी जनजाति चलचित्र दिन्छेन तिलमा हेन्से तिबा मुला चहाबिल्डी मुबा चलचित्र विकास बोर्ड रि तिबा सोमराला दिन्छेन रि आदिवासी जनजाति थेत्माला गुई रिमछिम थेन दोङराफ ओन्बा सेकादे ओन्सेदा मुला बिसी आयोजक से पाङबा मुला आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घला गे तेन्बा चोहो भुइ सल लामासे राङला थेत्माला गुई रिमछिम थेन दोङराब्दा सेना गोना लाबारी दिन्छेन से रो लाला बिसी सुङबा मुला महोतरीला गौशाला नगरपालिका चुइनी परियार रि इनार ख्वाबा धुइरी मेन्दो गिक ब्योन सिबा मुला तिलमा धिनेरी इनार ख्वाबा धुइरी निसास दिसी मेन्दो गिक ब्योन सिबा मुला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ मौतरीला प्रहरी सुङबोन पञ्चलाल गोलेसे सुङबा मुला इनार ख्वाबा धुइरी सर्लाइला ईश्वरपुर नगरपालिका चुइसोम धिमताबा निचुइ नि दिङला बसन्त कुमार महतो निसास दिसी सिबा खिन्ला याम्बु महानगरपालिकाला छात्र वृद्धि धाम्बा जाँच ग्याम तोङ चुइसे मेन्दो गाँचुई निस लोबोन पास ताबा मुला महानगरपालिका से तिलमा किन्बा छात्र वृद्धि धाम्बा झाँचरी तोङ चुइ भ्लि से मेन्दो गाँचुई निस लोबोन पास ताबा हिन्ला होजा छात्र वृद्धि महानगरपालिका नाङ्री सेङ्बा सरकारी स्यार घेन्दुन्डी स्यार सत्र 2083-84 कक्षा चुई गिक्थेन चुई निरी ब्रिबा डोबारी ताबा हिन्ला बिसी महानगरपालिका से पाङबा मुला स्याङ्ची बन मुबा सानग्युर जिन्जी फ्याफुल्ला
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज
3: श्रोतावृन्द नमस्कार नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सञ्चालित रेडियो शैक्षिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ।
4: श्रोता विद्यार्थी, आज हामी माध्यमिक तह कक्षा 10 नेपाली विषयको पाठ 2 रहेको घर झगडा कथापाठ अन्तर्गत रहेर भाषिक संरचनामा धातु तथा क्रियापदको पहिचान र प्रयोग, त्यसै गरी वर्णविन्यास अन्तर्गत दीर्घ इकारको पहिचान र प्रयोग, र अन्त्यमा सृजनात्मक कार्य अन्तर्गत मूलत कथा रचनामा केन्द्रित भई शिक्षक र विद्यार्थीबीच गरिएको छलफल प्रस्तुत गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर रेडियो सुन्दै मुख्य मुख्य बुँदाहरू टिपोट गर्न तयार हुनुहोस् है त। तयार हुनुभयो?

ये रेडियो नेपाल है, हफीज़ खान से उर्दू में ख़बरें सुनिए। ऐवानी नुमाइंदगान की हिज़्ब इख्तलाफ पार्टियों ने यह फैसला किया है कि वज़ीर आज़म बालिंदर शाह ने ऐवानी नुमाइंदगान में हाजिर होकर माफ़ी नहीं मांगने तक पार्लियामेंट का अजलास मुनक़िद नहीं होने दिया जाएगा। सिंह दरबार में आज मुनक़िदा हिज़्ब इख्तलाफ पार्टियों के अजलास ने वज़ीर आज़म शाह के ज़रिए नेपाल भारत सरहद के मौजू पर दिया गया बयान ख़ता से भरपूर होने का नतीजा उखज़ करते हुए उसे अजलास के रिकॉर्ड से हटाने का मुतालबा किया है। हिज़्ब इख्तलाफ पार्टियों के अजलास के बाद नशरियाती अहलकारों से बात करते हुए नेपाली कांग्रेस के व्हिप निष्कल राय ने कहा कि वज़ीर आज़म शाह के ज़रिए दिया गया बयान अगर सच्चा है तो उन्हें इसे वाजह करना होगा, वरना पार्लियामेंट से माफ़ी मांगनी होगी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पार्लिमानी जमात की नायब रहनुमा पद्मा रियाल ने कहा कि खुद मुख्तार पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म शाह के ज़रिए दिए गए बयान से पूरे नेपाल का सर झुक गया है और नेपालियों की खुददारी पर भी आँच आने की वजह से वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के अजलास के ज़रिए ही माफ़ी मांगनी होगी। उसी तरह नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ व्हिप युवराज दुलाल ने बताया कि हिज़्ब इख्तलाफ पार्टी के अजलास ने वज़ीर आज़म का बयान मुल्क मुखालिफ होने की वजह से इस रिकॉर्ड से हटाने का मुतालबा करने का फैसला किया है। अजलास में शामिल श्रम संस्कृति पार्टी के चीफ व्हिप आर एन राय और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की चीफ व्हिप खुशबू अली ने भी वज़ीर आज़म ने ख़ता से भरपूर बयान देने की बात कहते हुए इसमें तसही का मुतालबा किया है। अहम हिज़्ब इख्तलाफ पार्टी नेपाली कांग्रेस की अपील पर आज सिंह दरबार में नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का अजलास मुनक़िद हुआ था। कबल अज़ां ऐवानी नुमाइंदगान के आज के अजलास में हिज़्ब इख्तलाफ पार्टियों ने वज़ीर आज़म बालिंदर शाह के ज़रिए गुज़श्ता रोज़ के पार्लिमानी अजलास में दिए गए बयान को रिकॉर्ड से हटाने का मुतालबा किया था। आज के अजलास में हिज़्ब इख्तलाफ पार्टियों के अरकान पार्लिमान ने वज़ीर आज़म शाह ने सबूत व हक़ायक़ की बुनियाद पर बोलना चाहिए कहते हुए नेपाल ने भारत की सरहद तजावुज़ करने के सबूत पेश करने का मुतालबा किया। इजलास में वज़ीर आज़म बालिंदर शाह के बयान पर वजाहत तलब करते हुए हिज़्ब इख्तलाफ पार्टियों ने मज़ाहमत जारी रखने के बाद इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ऐवानी नुमाइंदगान का अगला इजलास कल दोपहर 1 बजे होगा। कौमी असम्बली के आज के अजलास में अरकान पार्लिमान ने गुज़श्ता रोज़ ऐवानी नुमाइंदगान के अजलास में वज़ीर आज़म बालिंदर शाह के ज़रिए दिए गए बयान पर एहतजाज जारी रखने के बाद कौमी असम्बली का आज का अजलास मुलतवी हो गया है। अजलास में अरकान पार्लिमान ने नेपाल ने भी भारत की सरहद तजावज़ करने से मुतालिक वज़ीर आज़म का बयान मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ होने की बात कहते हुए उसमें तसही का मुतालबा किया है। अजलास में कौमी असम्बली के सदर नारायण प्रसाद दाहल ने मुख्तलिफ़ ज़राए से वज़ीर आज़म शाह की तवज्जो मबज़ूल कराकर इस मसले को हल करने की बात कहते हुए इजलास को जारी रखकर अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की अरकान पार्लिमान से अपील की थी। अरकान पार्लिमान ने वज़ीर आज़म के ज़रिए ऐवानी नुमाइंदगान में दिए गए बयान में तस्दीक करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज जारी रखने के बाद सदर दाहल ने दूसरी बार शुरू हुआ इजलास भी मअतल कर दिया। कौमी असम्बली का अगला इजलास कल जेठ 19 गते मंगल को 1:15 बजे होगा। वजारत खारजा के मुताबिक नेपाली ज़मीन लिपुलेख होते हुए भारत के ज़रिए चलाया गया मानसरोवर की ज़ियारत के रास्ते से मुतालिक हुकूमत इससे कबल ही अपना रस्मी नज़रिया मंजर आम कर चुकी है। वजारत के मुताबिक इस मौके पर नेपाल के ज़रिए भेजे गए सफारती नोट के जवाब में भारत से भी सफारती नोट मौसूल हुआ है और दोनों ममालिक ने सरहदी ताल्लुकात के तनाज़ुआत को सफारती मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के आज़्म का इजहार भी किया है। नेपाल और भारत के दरमियान सदियों पुरानी तवील और खुली सरहद होने का तज़किरा करते हुए वजारत ने बताया है कि नेपाल भारत सरहद के तहत सुस्ता और लिम्पिया धूरा लिपुलेख कालापानी इलाके का नक्शा खींचना बाकी है और उन इलाकों के अलावा दिगर मकाम में 10 गजा में तजावुज़ और सरहद आर पार की ज़मीन इस्तेमाल करने से मुतालिक मसला कायम रहा है। वजारत ने यह भी वाजे किया कि वज़ीर आज़म के ज़रिए पार्लियामेंट में पेश करदा कई जगहों में भारत की ज़मीन नेपाल की जानिब हो सकती है वाला बयान इसी तकनीकी हकीकत से वाबस्ता है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने नेपाल और भारत के दरमियान के सरहदी तनाज़ों को सफारती ज़राए से हल करने पर ज़ोर दिया है। कौमी मफाद से मुतालिक मौजू पर कौमी मफाहमत कायम करके हक़ायक़ की बुनियाद पर भारत के साथ सफारती मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने पर पार्टी ने ज़ोर दिया है। पार्टी के तर्जमान प्रकाश ज्वाला ने आज एक प्रेस बयानिया जारी करते हुए खुद
قومی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے ناموافق اور قائم تاریخی حقائق مخالف بیان ناقابل قبول بتایا ہے۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی کے صدر ربیع لامی جھا نے آج بھارت کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی بھاجپا کے صدر نتن نبین کی دعوت پر صدر لامی جھا نے آج جیٹھ 18 سے 22 تک بھارت کے دورے پر رہیں گے۔ پارٹی کے ذریعے گزشتہ روز جاری کردہ پریس بیانیہ کے مطابق اپنے بھارت دورے کے دوران صدر لامی جھا نے بھارت کی نئی دہلی میں اعلیٰ سطحی سیاسی اور سفارتی ملاقاتیں کریں گے۔ اسی طرح اپنے اس دورے میں صدر لامی جھا نے بھارت میں مقیم نیپالی برادری اور پارٹی کے خیر خواہوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ پارٹی کے ترجمان منیش جھا کے ذریعے جاری کردہ بیانیہ کے مطابق نئی دہلی واقع نیپالی سفارت خانہ صدر لامی جھا نے کی اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے لیے ضروری یکجہتی کر رہا ہے۔ دریں اثنا راشٹریہ سوتنتر پارٹی نے اپنا پہلا اور تاریخی قومی جنرل کنونشن کی تیاریوں کو تیز تر کرتے ہوئے مرکزی اہتمامی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ پارٹی کے صدر ربیع لامی جھا نے کی صدارت میں تشکیل شدہ اس کمیٹی کے ارکان میں پارٹی کے نائب صدر ڈاکٹر سونیم واگلے، سیکرٹری جنرل کبیندر برلا کوٹی، منیش جھا، سوبیتا گوتم، ششیر کھنال اور ہری ڈھکال شامل ہیں۔ ساتھ ہی پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے تمام ارکان اور صوبائی صدور کو بھی جنرل کنونشن کی تیاری کے عمل میں شامل کیا گیا ہے۔ پارٹی کا یہ پہلا جنرل کنونشن آئندہ اساڑھ 7, 8 اور 9 گتے چیتون میں ہونا طے پایا ہے۔ ضلع دیلک کے بھیروی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 5 کالگونڈا میں مسافر بردار جیپ حادثے کا شکار ہونے سے 3 افراد کی موت ہو گئی ہے تو 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سرخیت سے کالی کوٹ کی جانب جاتی ہوئی مسافر بردار جیپ آج دوپہر تقریباً 1 بجے کالگونڈا کی پہاڑی سے تقریباً 300 میٹر نیچے گر گئی تھی۔ ضلع پولیس دفتر دہلک کے انچارج ڈی ایس پی شرون کمار بشکرما نے بتایا کہ جیپ میں سوار 8 مسافروں میں سے 1 خاتون اور 2 مردوں کی جائے وقوع پر ہی موت ہو گئی۔ اسی طرح ڈی ایس پی بشکرما نے بتایا کہ حادثے میں پڑ کر زخمی ہوئے 5 افراد کو علاج کے لیے ضلع اسپتال دیلیکھ لے جایا گیا ہے۔ ڈی ایس پی بشوکرما نے بتایا کہ زخمی اور متوفین کی مزید تفصیلات اور شناخت ابھی باقی ہے۔ پولیس کا اندازہ ہے کہ تیز رفتار کی وجہ سے بریک فیل ہونے سے حادثہ پیش آیا۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। बीतल जेट 17 रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैठक में कुछ सांसद लोग अमर्यादित आपत्तिजनक व्यवहार प्रदर्शन कैल विषय में जांच बुझ करबाक लेल प्रतिनिधि सभा के सचिव प्रकाश अधिकारी के संयोजकत्व में संसदीय जांच बुझ समिति गठन कैल गेल। सभामुख समक्ष 7 भीतर प्रतिवेदन पेश करबा सन संसद नियमावली 2083 के नियम 33(4) अनुसार समिति गठन कैल गेल। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल संसद बैठक के जानकारी करौलन। सोम दिन बैसल संसद बैठक में ओ ई जानकारी करबित समिति में संघीय संसद सचिवालय के आंतरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य रावासन सभामुख अर्याल जानकारी करौलन। अहिना प्रतिनिधि सभा नियमावली के नियम 31(4) अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए सिफारिश कैल जा सकबाक सेहो सभामुख समिति के जानकारी करौलन अछि। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक मंगल दिन के 1 बैसत। राष्ट्रसभा के आजुक बैठक में सांसद लोकन रवि दिनक प्रतिनिधि सभा के बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा देल गेल अभिव्यक्ति के विरोध जारी रखलाक बाद राष्ट्रसभा के आजुक बैठक स्थगित भेल अछि। बैठक में सांसद लोकन नेपाल सेहो भारत के सीमा मिचलक अछि कहि कऽ प्रधानमंत्री द्वारा देल गेल अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत रहल कहित सुधार करबाक मांग कयलनि। बैठक में राष्ट्रसभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल विभिन्न माध्यम सँ प्रधानमंत्री शाह के ध्यान आकर्षण कऽ एहि समस्या के समाधान कयल जा सकबाक कहित सभा के संचालन के लेल निरंतरता दऽ अपन दायित्व पूरा करबाक लेल सांसद सब सँ अनुरोध कयलनि। अध्यक्ष दाहाल सांसद

प्रतिपक्षी दलक सांसद लोकनि नेपाल भारतक भूभाग के अपना अधीन में रखलक विषयक प्रमाण संसद में पेश करबाक मांग कलक अछि। प्रतिनिधि सभा बैठक में आई धारणा रखैत सांसद लोकनि ई मांग कलनि। राप्रपाक सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही देशक सार्वभौम विषय आ भूमिक विषय गंभीर विषय भेलाक कारणे एकटा ओहिना अभिव्यक्ति देव गलत हेबाक ओ बतौलनि। ओ सभामुख डोल प्रसाद अर्याल मार्फत सरकार के नेपाल ई कोन ठाम जमीन हड़पलक अछि भूमि के प्रमाण पेश करबाक आग्रह कलनि। श्रम संस्कृति पार्टीक सांसद आर एन राय, प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह रवि दिनक प्रतिनिधि सभा बैठक में राखल गेल धारणा गंभीर रहलाक कारणे एहि विषय के प्रमाण सहित जवाब देबाक लेल मांग कलनि। ओ जवाब नहि देबा धरि बैठक सुचारू नहि होमय देबाक बात बतौलनि। नेकपा एमालेक प्रमुख सचेतक अनिल बहादुर महर भारी संघर्ष आ बलिदानी सँ आनल गेल उपलब्धि भेलाक कारणे एकर खिलाफ मे जाय वाला छूट ककरो नहि रहल कहैत प्रधानमंत्री द्वारा राखल गेल भूमि अपना अधीन में राखल धारणा संवेदनशील भेलाक कारणे जवाब देबाक मांग कलनि। नेपाल भारतीय भूमि अपन अधिग्रहण कयल विषय भारत दावी नहि कयल अवस्था में देशक प्रधानमंत्री एहन धारणा राखत देशक हित विपरीत भेल ओ टिप्पणी कलनि। प्रधानमंत्री बादल गेल धारणा संसद रिकॉर्ड सँ हटायल जाय कहियो मांग कलनि। राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी रासपा के सांसद इंदिरा राणा मगर प्रतिपक्षी सांसद लोकनि राखल गेल धारणा नियमावली विपरीत रहल कहैत सभामुख ध्यान आकर्षण करौलनि। नेकपाक सचेतक युवराज दुलाल देशक कार्यकारी प्रमुख कूटनीतिक भावना विपरीत धारणा राखल गेल कहते सुधार करबाक मांग कलनि। प्रधानमंत्री के धारणा सँ देशवासी में गंभीर आशंका पैदा कयल ओ टिप्पणी कलनि। विपक्षी दलक सांसद लोकनि बैठक आगू नहि बढ़ेबाक लेल सभामुख सँ आग्रह कलनि। नेपाल प्रहरीक राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्रैफिक व्यवस्थापन महाशाखाक आयोजन में आई जनकपुर धाम में ट्रैफिक व्यवस्थापन समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रम में मध्यप्रदेश प्रदेशक गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण करबाक लेल प्रदेश सरकार द्वारा कयल जाय वाला सब उपाय सब करबाक लेल सहयोगक हेतु तैयार रहल बतौलनि अछि। मध्यप्रदेश प्रदेशक श्रम तथा यातायात मंत्री शारदा देवी थापा सड़क तथा सवारी साधन में सुरक्षा अपनौला पर सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण कयल जा सकबाक कारणे एहि के लेल मंत्रालय की कला पर ठीक हैत यही लेल मंत्रालय तैयार रहल बतौलनि। मध्यप्रदेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख गोविंद थपलियाक अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में धनसाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुटेल अपन विचार व्यक्त कयने छलथि। नेपाल प्रहरी के राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्रैफिक व्यवस्थापन महाशाखाक प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपेक्षक भुवनेश्वर तिवारी ट्रैफिक संबंधी चेतनाक अभाव खराब सड़क तथा चालक के लापरवाही कारण सँ नेपाल में दैनिक रूप में 7.5 गोटे आ 2 दिन में 15 गोटे के मृत्यु होइत गेल जानकारी देलनि। नेपाल भरि में भारी आ छोट मिलाकर 66,70,628 सवारी साधन दर्ता रहल संगहि चालू आर्थिक वर्षक 10 मास में 25,811 सवारी दुर्घटना भेला पर 2,278 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 40,960 गोटे घायल भेल नेपाल प्रहरी जनौलक अछि। बीतल 10 मासक अवधि में प्रेत प्रदेशगत रूप में सबसे अधिक सवारी दुर्घटना में लुम्बिनी प्रदेश में 501 गोटे के मृत्यु भेल संगहि मधेश में 453 गोटे के मृत्यु भेल। मधेश प्रदेशक जिला सब में सबसे अधिक मोटरसाइकिल से दुर्घटना होइत गेल तथ्यांक अछि। मध्यप्रदेश प्रदेशक जिला सब में चालू आर्थिक वर्ष में 443 गोटे के मृत्यु भेल। ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बाराक प्रमुख प्रहरी उपेक्षक ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेत जानकारी देलनि। कार्यक्रम में प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ यातायात व्यवसायी सड़क डिवीजन कार्यालय सहितक विभिन्न निकायक व्यक्ति सब सहभागिता रहल छल। मध्यप्रदेश प्रदेश सरकारक वन तथा वातावरण मंत्री शंकर प्रसाद चौधरी वन संरक्षण वातावरणीय संतुलन तथा जलवायु परिवर्तन के चुनौती के संबोधन करबा सन आबयवला आर्थिक वर्ष 2083-84 के योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा कयल जेबाक बात बतौलनि अछि। वन तथा वातावरण मंत्रालय द्वारा आई जनकपुर धाम में आयोजित वार्षिक आर्थिक वर्ष 2083-84 के योजना तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रम में मंत्री चौधरी वन क्षेत्रक स्थायी व्यवस्थापन हरित विकास तथा वातावरण संरक्षण के केंद्र में रायकर जनमुखी योजना निर्माण कयल जेबाक आवश्यकता बतौलनि। ओ प्रदेशक जैविक विविधता संरक्षण वन्य जंतु स्रोतक सदुपयोग तथा वातावरण जोखिम न्यूनीकरणक कार्यक्रम के आवला बजट में प्राथमिकता देल जेबाक उल्लेख कलनि। मंत्री चौधरी वन तथा वातावरण क्षेत्रक विकास कृषि पर्यटन तथा समग्र आर्थिक गतिविधि में सकारात्मक प्रभाव पड़बाक उल्लेख करैत स्थानीयतः सरोकार भेल निकायक प्रतिनिधि तथा समुदाय संघक सहकार समन्वय के थप प्रभावकारी बनेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि।

0: ओहि अवसर पर मध्य प्रदेशक अर्थमंत्री विराज भट्टराय प्रदेशक आर्थिक क्षमता आवश्यकता के मध्य नजर रखते परिणाममुखी तथा प्रभावकारी योजना छनौट कैल जेबाक बात बतौलन। ओ सीमित स्रोत साधन के अधिकतम उपयोग हेबासन योजना निर्माण कैल जेबाक उल्लेख करत वन तथा वातावरण संरक्षण के कार्यक्रम से स्थायी विकासक लक्ष्य हासिल कैल जा सकबाक महत्वपूर्ण योगदान पहुँचेबाक विचार व्यक्त कैलन। अर्थमंत्री भट्टराय प्रदेश सरकार विकास निर्माणक संगे वातावरणीय संरक्षण के समान महत्व दऽ रहल चर्चा करते जनता प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करबाक कार्यक्रम के प्राथमिकता में राखि बजट विनियोजन कैल जेबाक जानकारी दलन। वन संरक्षण का वातावरणीय संतुलन करबा सन कार्यक्रम अयबाक हुनक कथन अछि। कार्यक्रम में मंत्रालयक सचिव जीवनाथ पौड़ेल आबवला आर्थिक वर्षक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा करैत काल प्रदेशक आवश्यकता उपलब्ध स्रोत दीर्घकालीन विकास लक्ष्य ही संतुलन कायम कैल जेबाक बात बतौलन। वन निर्देशनालयक निर्देशक जगन्नाथ प्रसाद जसवाल वन संरक्षण वृक्षारोपण जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणीय सचेतना अभिवृद्धि संबंधी कार्यक्रम के आबवला वर्ष थप प्रभावकारी ढंग से संचालन कैल जेबाक बात बतौलन। जनकपुर धाम में पहिल बेर 4 तारे होटल पौआ संचालन में आयल अछि। जनकपुर धामक मुजलिया में अवस्थित रहल 4 तारे पौआ होटल के विषय में जानकारी देबाक उद्देश्य सँ आई जनकपुर धाम में आयोजन कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में होटल के संचालन एहि क्षेत्रक प्रवर्धन आ पर्यटन में भारी मदद पहुँचबाक होटल पौआक संचालक समिति के उपाध्यक्ष ध्रुव निपा ने जानकारी दलन। 19 शाखाक रूप में कैसिनो सहितक होटल संचालन में अलाक बाद एहि क्षेत्रक आर्थिक विकास में भारी मदद पहुँचबाक दावी होटल के रहल अछि। देशभर में 100 होटल के संख्या आ शाखा सब खोलबाक पक्ष में संचालक रहल जानकारी प्रबंध निर्देशक विष्णु गैवाली जानकारी दलन। होटल पौआ सहित 19 शाखा सब देशक प्रमुख शहर सब में खोलकर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष मिलाकर 1500 नेपाली के रोजगारी प्रदान कैल ओ जानकारी दलन। रोहतक विभिन्न बाजार में विषादी तथा हानिकारक रासायनिक पदार्थ प्रयोग कर पकाओल गेल आम खुलेआम बिक्री वितरण भ रहल पाओल गेल अछि। मानव स्वास्थ्यक लेल जोखिमपूर्ण मानल जाय वाला कैल्शियम कार्बाइड प्रयोग कर कृत्रिम रूप में पकाओल आम गौड़ गरुड़ा चंदिगापुर कटरिया शिवनगर सहित जिला में अधिकांश बाजार में बिक्री भ रहल कहित उपभोक्ता चिंता व्यक्त कैलक अछि। उपभोक्ता हित संरक्षण मंच रोहतक अध्यक्ष टीका घिमरे जिलाक चंदिगापुर गरुड़ा तथा गौड़ क्षेत्र में कार्बाइड प्रयोग कर पकाओल गेल आम ओहि के नियंत्रण के लेल संबंधित निकाय सँ प्रभावकारी पहल नहि कयल शिकायत कयलनि अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनने छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।
1: नेपाले धुम्रो पान व सुर्ती दक्षी सुई पेडो मनो तसिना चङ्गो दु तर ठो लट टोटी फै
2: छि ठो लट टोटी गु खसा थौ हे गोप्पे व तामवाक नेनी गु सेवा क्विटल्यान्ड 1132 स्वापु तया दिस
3: ठो सेवा ज्याकु इले का फै
2: वाचाका दिस धुम्रो पान व सुर्तिया लट टोटी त नेनी गु सेवा क्विटल्यान्ड 1132
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र टेकुए।

ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अभिव्यक्ति को लेकर स्पष्टीकरण की मांग के साथ प्रतिपक्षियों ने संघीय संसद के दोनों सदनों की बैठकों को किया अवरुद्ध। प्रतिनिधि सभा की कल की बैठक में सांसद के अमर्यादित व्यवहार के विषय में जांच के लिए समिति हुई गठित। रासोपा के सभापति रवि लामिछा ने 5 दिवसीय भारत भ्रमण के क्रम में पहुंचे नई दिल्ली। दिल्ली की भैरवी गांव पालिका में जीप हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, 5 की हालत गंभीर। और म्यांमार के एक गांव में हुए विस्फोट में कम से कम 55 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेपाल भारत सीमा संबंधी बयान पर स्पष्टीकरण की मांग को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी रहने के कारण प्रतिनिधि सभा की बैठक मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री शाह के बयान को तथ्यहीन और त्रुटिपूर्ण बताते हुए उसे अभिलेख से हटाने और वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि नेपाल द्वारा भारत की भूमि अतिक्रमण किए जाने संबंधी प्रधानमंत्री की टिप्पणी का कोई प्रमाण नहीं है। विरोध के बीच सभामुख टोल प्रसाद अर्याल ने सदन संचालन में सहयोग की अपील की, लेकिन विपक्षी सांसदों के लगातार विरोध के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी। इस बीच रविवार की बैठक में संसद के भीतर कथित अमर्यादित व्यवहार की जांच के लिए प्रतिनिधि सभा सचिव प्रकाश अधिकारी के संयोजकत्व में एक समिति भी गठित की गई है, जिसे 7 दिन के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे होगी। राष्ट्रीय सभा की बैठक में भी प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेपाल भारत सीमा संबंधी बयान को लेकर विवाद जारी रहा, जिसके कारण आज की बैठक स्थगित कर दी गई। सांसदों ने प्रधानमंत्री के उस बयान का विरोध किया जिसमें उन्होंने नेपाल द्वारा भी भारत की कुछ भूमि उपयोग में होने की बात कही थी। सांसदों ने इसे राष्ट्रहित के विपरीत बताते हुए बयान को सुधारने की मांग की। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से प्रधानमंत्री का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित कराया जाएगा और समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सांसदों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने का आग्रह भी किया। हालांकि सांसदों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद अध्यक्ष दाहाल ने बैठक दूसरी बार भी स्थगित कर दी। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 बजे होगी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछा ने 5 दिवसीय भारत भ्रमण के क्रम में आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के न्योते पर नई दिल्ली पहुंचे सभापति लामिछा ने का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर भाजपा के महासचिव और विदेश विभाग प्रमुख ने स्वागत किया था। भ्रमण के दरमियान सभापति लामिछा ने के उच्च स्तरीय राजनीतिक और कूटनैतिक भेंट वार्ताओं के कार्यक्रम है। भ्रमण में उनके साथ श्रीमती निकिता पोडेल, रासोपा सह महामंत्री विपिन कुमार आचार्य, विदेश विभाग प्रमुख दीपक बोहरा और स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य शामिल हैं। दैलख जिले की भैरवी गांव पालिका में एक यात्री जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सुरखेत से कालीकोट जा रही जीप आज दोपहर करीब 1 बजे भैरवी गांव पालिका 5 कालगौंडा में हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कालीकोट शुभकालिका गांव पालिका 5 के 35 वर्षीय चालक कल बहादुर रोकाया, वार्ड नंबर 4 के 38 वर्षीय मित्र सुनार और इसी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 की 55 वर्षीय पुलती सरा विक की मौत हो गई, ये जानकारी पुलिस ने दी। घायलों को स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल दैलख भेजा गया। दांग के तुलसीपुर में एक टिपर की टक्कर से पिता और पुत्र की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार लम्ही नगरपालिका 5 निवासी 35 वर्षीय मनोज नेपाली और उनके 5 वर्षीय पुत्र मीनराज नेपाली की उपचार के दौरान कोहलपुर शिक्षण

0: हुन्छ हजुर।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
3: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: है त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
4: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
6: अब बाकी समाचार। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा और सार्वजनिक कूटनीति संबंधी अमेरिकी उप विदेश मंत्री सारा बी रोजर्स के बीच आज भेंटवार्ता हुई। भेंट के दौरान नेपाल अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, डिजिटल सुरक्षा और निवेश विस्तार जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अमेरिकी उप विदेश मंत्री रोजर्स ने कहा कि अमेरिका सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र में नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी कंपनियां नेपाल में निवेश विस्तार करना चाहती हैं और इसके लिए निवेश अनुकूल वातावरण तथा नीतिगत स्थिरता आवश्यक है। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन ठगी, अश्लील सामग्री के प्रसार और बाल सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने में सहयोग की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। वहीं संचार मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने कहा कि नेपाल सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक और प्रशासनिक रूपांतरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में सभी प्रकार के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्वागत करता है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने आगामी 7-9 आषाढ़ तक चितवन में होने वाले अपने प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारियां तेज कर दी हैं। महाधिवेशन को भव्य और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पार्टी सभापति रवि लामिझाने के नेतृत्व में मूल आयोजक समिति का गठन किया गया है। पार्टी प्रवक्ता कविंद्र बुरलाकोटे के अनुसार समिति में उपसभापति एवं अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले, महामंत्री कविंद्र बुरलाकोटे और भूपदेव शाह सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। रासोपा ने बताया है कि महाधिवेशन की तैयारी को प्रभावकारी बनाने के लिए सभी केंद्रीय सदस्यों और 7 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों को भी मूल आयोजक समिति में शामिल किया गया है। झापा के शिवशताक्षी नगरपालिका 4 स्थित झापा एनर्जी प्लांट में आग लगने से लगभग 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिला प्रहरी कार्यालय झापा के अनुसार आज दोपहर लगी आग में प्लांट में मौजूद विभिन्न मशीनरी और उपकरण जलकर नष्ट हो गए। ये प्लांट लाल प्रसाद सांवा के स्वामित्व में है। प्रहरी, दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार में रविवार को एक इमारत में जोरदार धमाका हुआ जिसमें 55 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस इमारत में खनन के लिए इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक रखे हुए थे। नामखाम टाउनशिप के कोंगटुप गांव में हुए इस धमाके में 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 70 लोग घायल हो गए। म्यांमार में ये इलाका चीनी सीमा से करीब 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से मध्यस्थ के जरिए हो रही बातचीत को निलंबित करने का फैसला किया है। ईरान का कहना है कि लेबनान में सीज फायर भी युद्ध विराम की शर्तों में से एक था और अब लेबनान सहित सभी मोर्चों पर इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए ईरान की नेगोसिएशन टीम ने अप्रत्यक्ष बातचीत को रोकने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान और गजा पर इसराइली हमलों को फौरन बंद करने और लेबनान के कब्जे वाले क्षेत्रों से पूरी तरह से वापसी होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। सैन्य और सुरक्षा संस्थानों के करीबी माने जाने वाली इस समाचार एजेंसी ने लिखा है कि रेजिस्टेंस फ्रंट और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद करने और बाब अल मंडाब स्ट्रेट सहित अन्य मोर्चों को सक्रिय करने और नए मोर्चे खोलने का लक्ष्य रखा है। पिछले कुछ घंटों में वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने लेबनान में इसराइली हमलों को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिनमें विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची भी शामिल हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस युद्ध विराम का किसी एक मोर्चे पर उल्लंघन सभी मोर्चों पर इसके उल्लंघन के समान माना जाएगा। युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन के परिणामों की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर होगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने सेना को लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हमला करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जिस जगह पर हमला करने का आदेश दिया गया है उसे दहिया कहा जाता है और ये हिजबुल्लाह का अहम गढ़ माना जाता है। इससे पहले लेबनान के राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने इसराइल के हमलों की कड़ी निंदा की थी। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आज

0: की स्थिति पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में ताजा तनाव और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अभिव्यक्ति को लेकर स्पष्टीकरण की मांग के साथ प्रतिपक्षियों ने संघीय संसद की दोनों सदनों की बैठकों को किया अवरुद्ध। प्रतिनिधि सभा की कल की बैठक में सांसद के अमर्यादित व्यवहार के विषय में जांच के लिए समिति हुई गठित। रासोपा के सभापति रवि लामी झा ने 5 दिवसीय भारत भ्रमण के क्रम में पहुंचे नई दिल्ली। दिल्ली की भैरवी गांव पालिका में जीप हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, 5 की हालत गंभीर और म्यांमार के एक गांव में हुए विस्फोट में कम से कम 55 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
1: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
2: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
3: *14#15# डायल गर्नुहोस्।
4: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी भई भविष्य सुरक्षित बनाओ। यस योजनामा न्यूनतम मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गरेर सहभागी हुन सकिन्छ।
6: नागरिक लगानी कोष।
7: झण्डु आयुर्वेद।
8: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक पुतली सडक काठमाडौँ।
7: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
8: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
7: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
8: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
9: यही 2083 वैशाख 2 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सङ्घ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ।
10: कृषक माझ बिउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र ललितपुरको अनुरोध।
11: जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा देशका अधिकांश भूभागमा सरदर भन्दा कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा धान खेती गर्ने कृषकहरूमा बिउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र ललितपुरको अनुरोध।
10: नेपालमा सूचित वा पञ्जीकृत भएका धानका जातहरू छनौट गर्नुहुन अनुरोध सहित
11: छोटो अवधिमा पाक्ने धानका जातहरू छनौट गर्नुहुन समेत आग्रह गर्दछौ।
10: सम्भव भएसम्म सुक्खा सहने जातहरू जस्तै सुक्खा श्रृङ्खलाका जातहरू तथा घैया 1, 2 र 3 र सुक्खा तथा डुबान दुवै सहने बहुगुणी 1, बहुगुणी 2 जातहरू प्रयोग गर्न हुन अनुरोध छ।
11: यसका साथै सुक्खाको प्रभाव कम गर्न धानको ब्याड राख्दा एकै पटक नराखी निश्चित दिनको अन्तरालमा राख्नु हुन, त्यस्तै बर्सातको पानी संकलन प्रविधि, छरुवा धान प्रविधिको अवलम्बन गर्नुहुन समेत अनुरोध छ।
10: बिउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवन तथा राष्ट्रिय बिउबीजन समितिको सचिवालय ललितपुर।
11: फोन नम्बर 5-42-13-59।
5: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
6: नागरिक लगानी कोष।
12: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
13: नेपालको समावेशी आवाज।